0: भरी महसूस होती है, लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर
1: सवाबी। ज्वानी द ज्वानको न बगैर निमगिड़ी हुई हो कुचर त दग ज्वानको पवख बाने गम उनकलेशी न प रारवान वक की दग ज्वानके सासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयल स्किन और द दानो द पारा यो डियर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम तुम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश तुम चिप द ऑयल स्किन और द एक्नी द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा कुम चिप सलूर उरजु की सासु द स्किन एक्नीस पिंपल पो मुकम्मल तो गबाने खत्मई और यवाज दाना द दग दानो चकम दागु नदी अगा हम पो मुकम्मल तो गबाने खत्मेगी पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड सल्सिलिक एसिड टी ट्री ऑयल और क्लिंडामाइसिन कुम ची यो देर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कुम ची सिर्फ और सिर्फ सलूर स्पूकी दनन दनन सासु दानी और दानु दागुना पर मुकम्मल तो गबानी खत्म नो जर तरजरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन डेरे मसले अवारे कई द मजीद मालूम दारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.

खुद को आजमा के रोएंगे। सलामुन जी सलाम ना संग मंग चल दे सहालत वाकिया थे टिक टाक की खैर खरी थे यकीन तासब टिक टाक की खैर खरी सर वे दिल भर रेडियो आवाज और दो दफा रेडियो जहान मना ना चिता सो ट्यून इन कड़े जी अपल कोरोना इज रतन इज द एफएम स्टेशन एफएम 94 रेडियो दिल भर सो भी कदरमंदो संग मंग चल दे सहालत वाकिया थे ठीक होई का ना खा होई का ना खा खबर दचता सुखी او کتا سو خنینو تاس دپاره سم بلاد واغان چې الله

0: अच्छा जनाब बताइएगा क्या हालात हुआ, क्या आते हैं, जिंदगी आप लोगों की कैसी गुजर रही है? जिंदगी ठीक गुजर रही है, मतलब यहाँ ना ये की है जिंदगी ठीक तरीके से गुजार रहे हैं ना? जरा ठहरिए सुबह की इस खूबसूरत रोशनी में, अपनी मसरूफ जिंदगी की रफ्तार को एक लम्हे के लिए जरा सा साइड पे कर दें, जरा सा आहिस्ता कर दें, सांस ले लें जी।
1: रहेगा तेरा मुंतजिर,
0: आने वाले तुझको क्या

अच्छा जनाब, तो मैं क्या बात कर रहा था कि इस मसरूफ जिंदगी की रफ्तार को थोड़ा सा मदम कर लें, आहिस्ता कर लें, मुस्कुराइए और महसूस कीजिए कि आज का दिन जो है ना, आज का दिन आपके लिए एक बिल्कुल नई कहानी लेकर आया है। खिड़की के बाहर मौसम अपनी खूबसूरती बिखेर रहा है जी, हवा में ताजगी है, फिजा में एक अजीब सा सुकून है, और ऐसे में अगर कहीं से जो है ना कोई पसंदीदा आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो ये आप लोगों की खुशी।

कीजिए कि सुबह सिर्फ जो है ना सुबह नहीं रहती जी, ऐसे लम्हात में एक खूबसूरत एहसास बन जाती है और इसी एहसास के साथ, इसी ताजगी के साथ, इसी हल्की सी रूमानी कैफियत के साथ मैं हाजिर हूँ आप लोगों के दरमियान, आपका अपना प्रेजेंटर, आप लोगों का अपना होस्ट, आप लोगों का अपना दोस्त ताहिर जमान, और आप सुन रहे हैं दिलबर रेडियो सोवाबी जी और दिलबर रेडियो सोवाबी की आवाज़। जी हाँ जनाब, आज की ये सुबह जरा मुख्तलिफ है क्योंकि जो है ना आज हम सिर्फ नहीं यार, गाने बजाने तो होंगे और सिर्फ बातें नहीं होंगी बल्कि जो है ना कुछ देर के लिए अपनी जिंदगी को महसूस करेंगे, इन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करेंगे जिन्हें हम रोजमर्रा की भाग दौड़ में अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो मेरे प्यारे सामिन, आप जहाँ कहीं भी हैं यकीनन आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जिस हालत में भी हैं आज जरा दिल जो है ना खोल कर बताइएगा कि कैसे हैं आप, वाकई ठीक हैं या सिर्फ दुनिया को बताने के लिए ठीक हैं। जिंदगी में क्या चल रहा है, सुबह कहाँ से शुरू हुई, आंख कब खुली, आंख खुली तो सबसे पहले जो है ना किसका ख्याल आया, आज क्या करने का इरादा है, काम पर जाना है, दुकान खोलनी है, दफ्तर पहुँचना है, सफर करना है, घर के काम करने हैं, घर के काम निपटाने हैं, या आज किस्मत ने आपको थोड़ा सा आराम करने की इजाजत दे दी है। जी जो कुछ भी है हमें बताइएगा क्योंकि रेडियो की ये महफिल तभी मुकम्मल होती है जब दूसरी तरफ से आपकी आवाज, आपके पैगाम, आपके मैसेजेस, आपकी मौजूदगी और आपके एहसास भी हमारे साथ शामिल होते हैं। सो हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए, हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप मुझे कॉल्स कर सकते हैं 0938-280-495, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं और शामिल हो सकते हैं। दिल लगाया नो जनाब सब हबारे गंदन मुंह खबर बखोजे खा कजन दस सच गंदन मौका दर कही यो बंदे जगंदे हैं शुक्रिया ता स्वादा के आओ आ बंदा कम यो बंदा भई कम यो इंसान भई कम यो कस भई चिता सोदा की शुक्रिया वादा कहोए और पस्सु बान जगंदे हैं शुक्रिया वादा कहोए सही दिखा ना नौजनाब तासो अफल पैगमात दा हम लेकिन जगंदे हैं पैगमात हम माता कहोले शे जी मैसेज नम कहोले शे 03072700666

अरे भाई उस मोहब्बत से या उन मोहब्बतों से आप लोगों के पैगामात नहीं आ रहे, पता नहीं आप लोग क्यों खामोश हैं। क्या मतलब आप लोगों को कोई रोग लगा हुआ है या मतलब यहाँ ना ये कि क्या आपको आपके अंदर कोई दर्द है, दर्द से चूर चूर है। प्रोग्राम लराशा खाम खाज कमदन प्रोग्राम लराशा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम दाचा मैसेज दे जी वे वे दा खुश गमदन ताहिरी मैसेज दे पखेर न पखेर सिंगे खी ठीक ठाक ही आंटी तास खी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सिंगे जी खी खैर खरीत आयजा नूर सिंह दा अनाया नूर सिंह दा अनाया नूर हम खदा आयजा नूर हम खदा आओ प्रोग्राम मौसम जबरदस्त थे। साहिबा खान मैसेज कीजिए, शुक्रिया साहिबा खान। सलाम ताहिर भैया सलाम ना फजान कमदन कबूल मंजूर करा। उजमा मैसेज कीजिए, उजमा मनाना शुक्रिया। एंड नेक्स्ट शोक शामिल जी। अच्छा दो महीने बाद जो है ना मैं आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, ये कौन हमारा साथ दे रहे हैं। सना काका खेल ने मैसेज किया है, सना फिर आप मुझे मतलब जो है ना वैसे ही मैसेज करती रही हैं, ऐसे ही मतलब जो है ना आपने मैसेजेस के अंबार लगे हुए थे। गुड मॉर्निंग बदरंग सिंह ठीक ठाक ये खैर खरीत अल्हम्दुलिल्लाह मलिहा तनहा मैसेज किए वही अनाया नूर था आयजा नूर था सलाम जी वालेकुम असलम मनाना शुक्रिया। सलाम ताहिर भैया वालेकुम अस्सलाम जी आसमा दा गदुन्ना एंड सासु शो नाइस जी शुक्रिया मनाना। एंड नेक्स्ट दर्शा मैसेज अगले दे वाओ पखेर आले पखेरुना

तो मेरे प्यारे सामीन, जहाँ भी हैं, जिस हालत में भी हैं, आज जरा दिल खोलकर बताइएगा कि कैसे आप वाकई ठीक हैं या सिर्फ जाना दुनिया को बताने के लिए ठीक हैं। जिंदगी में क्या चल रहा है, सुबह कहाँ से शुरू हुई है, आंख खुली है तो सबसे पहले जो है ना किसका ख्याल आया है। और एक बात खास तौर पर जो है ना आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि बताइएगा कि बाहर का मौसम तो माशाल्लाह जो है ना बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आपके दिल का मौसम जो है ना कैसा है? वहाँ धूप निकली हुई है या मतलब जो है ना धूप नहीं है, या कोई याद बादल बनकर जो है ना छाई हुई है? दिल खुश है या किसी के एक पैगाम के इंतजार कर रहा है? चेहरे पर मुस्कुराहट है या दिल के किसी कोने में कोई खामोश खामोश सी बात बैठी हुई है? क्योंकि कभी कभी बाहर का मौसम कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, अगर दिल का मौसम उदास हो तो धूप भी जो है ना फीकी लगती है, और कभी दिल खुश हो तो मामूली सी हवा भी मोहब्बत का पैगाम महसूस करवाती है ना। और शायद इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि मौसम सिर्फ जो है ना आसमान पर नहीं होता, असल मौसम तो इंसान के अपने दिल में होता है जी, इंसान अपने दिल में लिए फिरता है। आहा,

आज का हमारा कुछ थोड़ा सा मौजू, हम इस मौजू पे भी बात कर लेते हैं कि किसी के चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे छुपा दर्द कौन देखता है, ठीक है ना। अक्सर कोई नहीं देखता जी, लोग चेहरे की मुस्कुराहट देखते हैं, आंखों के पीछे छुपी थकन नहीं देखते। कोई हंसकर मिले तो हम समझ लेते हैं कि वो बहुत ज्यादा खुश है, हालांकि मुमकिन है कि वो अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल जंग लड़ रहा हो ना। कुछ लोग अपने आंसू छुपाकर मुस्कुराना सीख जाते हैं, और यूं भी होता है लिसनर्स के वो इसलिए मतलब जो है ना मुस्कुराना सीख लेते हैं ताकि जो है ना किसी को उनकी कमजोरी का अंदाजा ना हो। और इस बात पे मैं काफी सारी बातें कर सकता हूँ जी, और मजीद भी मैं बातें करूंगा।

अच्छा अटक से एक मैसेज आया जी, और ये मिक्सिंग के हवाले से कह रहे हैं कि मिक्सिंग करें जी आप हेनको ट्रैक के साथ। चलिए कोशिश करेंगे जी। याद रखिएगा लिसनर्स कि कभी कभी जिंदगी को मतलब जो है ना या यूं बोलूं तो ये भी गलत ना होगा, कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मुकाम पर ला खड़ा करती है जहां आंखें रो नहीं सकती, जबान शिकायत नहीं कर सकती, दिल किसी के सामने अपना हाल बयान नहीं कर सकता, और फिर इंसान एक अजीब सा हुनर सीख लेते हैं ना, मुस्कुराने का हुनर, वो लोगों के दरमियान बैठा होता है, दूसरों से मिजाक पर कहका लगाते हैं, खैरियत पूछने वाले को बड़े एतमान से कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहे भाई, मगर ये कोई नहीं जानता कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे कितनी रातें जागती हैं, कितनी दुआएं आंखों के रास्ते बाहर आने से पहले वापस दिल में उतर गई हैं, कितने सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला, कितनी यादें ऐसी हैं जो खामोशी में शोर मचाती हैं, कितने रिश्ते ऐसे हैं जो मतलब बज़ाहिर कायम हैं मगर अंदर से टूट चुके हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरों को हंसाने के लिए खुद अपने दिल के दुख को दफन करके मतलब जो है ना जीते हैं, अपनी जिंदगी दफन करके अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। अच्छा यहाँ ये बात मैं कहना चाहूंगा लिसनर्स कि हम कितने अजीब लोग हैं ना, चेहरा देखकर इंसान का हाल बता देते हैं मगर दिल देखने की कोशिश नहीं करते। कोई हमारे सामने मुस्कुरा दे तो हम फौरन जो है ना फैसला कर लेते हैं, हम फौरन फैसला कर लेते हैं कि ये इंसान खुश है, जिंदगी से मुतमैन है, इसे कोई गम नहीं है, इसे कहीं है, कभी कभी जो है ना इसकी बिल्कुल बरक्स होती है, इसे चेंज होती है। बाज़ मुस्कुराहटें खुशी की अलामत नहीं होती, वो इंसान की मजबूरी होती हैं। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को कि बाज़ मुस्कुराहटें खुशी की अलामत नहीं होती, वो इंसान की मजबूरी होती हैं। वो मुस्कुराहट जिसके पीछे एक ऐसा दर्द छुपा होता है जिसे बयान करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं, वो शख्स जो हर एक से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वाकई जो है ना वो ठीक हो, परफेक्ट हो, अच्छा हो, मुमकिन है कि वो सिर्फ जो है ना जान चुका हो कि दुनिया के पास उसके दर्द को सुनने का वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। कभी गौर कीजिएगा लिसनर्स, कभी गौर कीजिएगा, जो शख्स हर महफिल में सबसे ज्यादा हंसता है जरूरी नहीं है कि उसके दिल में सबसे ज्यादा खुशी हो। कभी कभी सबको खुश रखने वाले लोग जो है ना खुद अपने लिए सुकून तलाश करते रहते हैं, वो दूसरों की परेशानियां सुन लेते हैं, दूसरों को हौसला दे देते हैं, दूसरों के आंसू पूंछ लेते हैं, मगर जब रात के आखिरी पहर कमरे में खामोशी उतरती है, मोबाइल एक तरफ रख दिया जाता है, रोशनी मदम होती है और इंसान अपने आप के सामने आ बैठता है, तब वही मुस्कुराहट कहीं दूर रह जाती है। और ताहिर यहां ये बात भी कहना चाहेगा लेसन्स के, और दिल पूछता है कि आखिर मैं कब तक सबको ये बताता रहूंगा कि मैं ठीक हूं, मैं परफेक्ट हूं, ओके हूं। और सबसे अजीब बात यहां ये भी है ना कि दर्द हमेशा आंखों में आंसू बनकर नहीं आता, कभी वो खुशी बनकर जाता है, कभी बेवजह की हंसी, कभी हर रात पर कोई बात नहीं, कभी लोगों से दूरी, कभी अचानक बोलता हुआ चले छड़े छोड़े रहने दें। एंड उर्दू ट्रैक आप लोगों के लिए प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। उर्दू ट्रैक कौन सा वाला ट्रैक शामिल करूं यार।

नेक्स्ट कॉलर गुरु सोगरा जख्म जैना 09 30 280 495। अस्सलाम वालेकुम जी। पखेर ना पखेर पखेर पखेर सिंह आंटी दस कही ठीक ठाक है। हेलो हेलो तो जो कमदन पांटी था बद अच्छा तो कमदन आंटी में नशी वेले दम कर देता यार।

0: काश के तुम वफा,
1: काश के तुम वफा निभा लेते, गम को हंसकर गले लगा लेते, दर्द को हाय मुस्कुराकर, दर्द को सहकर भी हम मुस्कुरा लेते जी, और दर्द कितना भी गहरा हो हम मुस्कुरा लेते। शायद यही जिंदगी का सबसे अजीब हुनर है कि इंसान अंदर से टूट रहा होता है मगर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए दुनिया के सामने चलता रहता है। कोई पूछता है क्या हाल है तो हंसकर कह देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हाल है। कोई पूछता है परेशान तो नहीं हो तो जवाब आते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर इंसान अपने ही दिल की आवाज को खामोश करके अपने ही दिल की आवाज को खामोश करके दोबारा लोगों के दरमियान शामिल हो जाता है। मगर हकीकत ये कुछ गम ऐसे होते हैं जिन्हें खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ सीने से लगाना पड़ता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका इलाज नहीं मिलता, बस उन्हें बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करना पड़ता है ना इंसान को। हम मुस्कुराते हैं क्योंकि मालूम है कि हमें मालूम है कि हर शख्स हमारे आंसुओं की जुबान नहीं समझ सकता। हम हंसते हैं क्योंकि हर महफिल में अपना दर्द लेकर बैठ जाना मुमकिन नहीं होता। हम खुद को मजबूत जाहिर करते हैं क्योंकि जिंदगी हर रोज हमें एक नया इम्तिहान देकर कहती है कि चलो आज फिर मुस्कुरा कर दिखाओ। कभी दिल चाहता है कि सब कुछ छोड़ दें, किसी खामोश जगह जा बैठें, किसी पहाड़ के दामन में, किसी दरिया के किनारे।

लग रही है, मुमकिन है कि कुछ अरसे बाद वही बात जिंदगी का एक सबक बन जाए। आज जिस जुदाई पर आंख नम है, मुमकिन है कल उसी जुदाई के बाद इंसान अपने रब के सामने बैठ जाए, अपने रब के ज्यादा करीब हो जाए। मेरे स्वीट सामीन, मेरे स्वीट लिसनर्स, कहने को तो बातें बहुत सारी हैं। आज मेरा वहाँ पे मतलब हरिपुर स्टेशन पर भी प्रोग्राम है, स्माइल एफएम पर भी, तो बाकी की बातें वहाँ पर करेंगे जी। दशपेज गमदन और प्रोग्राम दे हरिपुर चैनल ना हम ताज गमदन ताजता सिग्नल द हरिपुर रेडियो राधे शिकनर ननोद। बाकी दिल की बड़ास जो है ना वहाँ उस स्टेशन पर निकालेंगे जी। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ताहिर जमान की दुआ में आप हमेशा हमेशा शामिल रहेंगे। जहाँ रहेगा जिधर रहेगा अपनी दुआ में ने बेवफाई ना की, तो फिर मिलेंगे सेम चैनल सेम पैनल। तब तक के लिए दिल दी पाकिस्तान, यानी कि हमेशा रहे पाकिस्तान। अल्लाह पामान एंड लव यू ऑल। बाय बाय।

मेरे मोहतरम सामीन, जिंदगी शायद जो है ना यही सिखाती है कि खुशी आए तो शुक्र करो और गम आए तो सब्र करो, क्योंकि ना खुशी हमेशा रहती है ना गम हमेशा रहता है। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, हत्ता के दिल की कैफियत भी बदल जाती है। आज जो बात पहाड़

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

0: बिल्कुल जमंगा वीडियो से वो अखर मिला ही सब टीम के प्रोग्राम उरी सो अबई गई पलकार हम के देर मसरूफा रेडियो मौरी ने अलावा श्री अलीशा से बरसरम प्रोग्राम उरी दिन अलावा उबैद अलीशा और सरम प्रोग्राम उरी दिन अलावा इस्माइल खान हम प्रोग्राम उरी मैं संग एक ही गाना अभी देखा दे दिन अलावा दगलते सुख सुख हम जमा आवाज उरी FM 94 रेडियो बिलबर सोबाई आवाज उरी तोले तजमा दे तरफ ना डियर डियर सलाम सजान माने कबूल है मंजूर के जईदा से पुनः छोटा दी 2495 गुरु मंगे सर नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम
1: हेलो
0: अस्सलाम वालेकुम राजी रो सुख खबर है अच्छा था ना
1: हेलो
0: अस्सलाम वालेकुम सुख खबर है ओ माय गॉड आवाज सासु खपल आवाज मात नहीं रहा तो जमा आवाज सासु आवाज मात रहा तो कि देश जमा आवाज सासु अंदर लो बहरहाल बैठ रही हूँ कहा 0938 2484 95 नेक्स्ट कल रात शो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम सु खबर कह रही छा सुख आवाज दिडीर जात गडबड राजी लग इलेक्शन तक जे बदल के आवाज सफाशी द कम जाना कराची ना

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।
2: You're just seconds away from more of your favorite music on
3: Das Radio, Dilbar Radio.
4: Das Open Channel, Radio Dilbar. Das Open Channel, Radio Dilbar.
5: Radio Dilbar.
6: सर्दी हो या गर्मी, रेडियो दिलबर आपके संग संग।
7: वेलकम टू FM 94, ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम स्वाबी, फ्रॉम 5 AM टू 1 AM।

0: आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन।
1: आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन।
0: रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे।
2: या हबीबी, या मुहम्मद, या नबी।
0: कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह, दिलबर एफएम 94 स्वाबी।

आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर एफएम 94 सवाबी। दिलबर एफएम 94।